जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

है हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब वर्षों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है। उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए बस दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा बैठा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों आज शुक्रवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0302-62-66-11। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड, कंप्यूटर की जरिए भी प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी ये प्रोग्राम सुनाई दे है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अरविंद। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम। पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS के जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। शुक्रवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। तो जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं जरूर और जरूर रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जो है सुनते ही रहना। अगला भजन जो आज के ये प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, हम आपको ले चलते हैं ये खास सुंदर और सुंदर भजन की ओर जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। सुंदर सा माता जी का भजन आज शुक्रवार की भजन यात्रा के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

ही सुंदर माता जी का भजन बस आज के ये प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों के लिए सभी भक्त प्राणियों के लिए। चलिए प्रोग्राम में एक और सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए।

सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे की आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। भजन यात्रा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चलिए अभी बाहर हम आपको ले चलते हैं शुक्ला की आवाज में ये सुंदर भजन जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

ही सुनने वालों की सेवा में बस पीस की गई है। चलिए अब की बार उदित नारायण की आवाज में एक सुंदर सा माता जी का भजन आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

पास में सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए भजन यात्रा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये खास प्रोग्राम पेश किया जा रहा है हमारी सभी और सभी भक्त प्राणियों के लिए। चले प्रोग्राम में अब की बार ये सुंदर भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों चले प्रोग्राम में श्री महालक्ष्मी चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। उसके बाद आरती भजन पेश किया जाएगी।

विवेक की आवाज में ये सुंदर सा श्री महालक्ष्मी चालीसा सभी सुनने वालों की सेवा में बसपीस की गई है। चलिए यहाँ से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

सोनू निगम के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सब ही सुनने वालों की सेवा में। खासतौर पर एल्बम का नाम जान उसी एल्बम में से निकाल कर ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए। 8:14 वैदित हो चुका है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। 25 सितंबर का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। शुक्रवार का दिन, इट इज फ्राइडे 25 सितंबर। चलिए प्रोग्राम में गाना जो पेश होगा कुमार सानू एंड अलका जी की आवाज में। सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट की जरिए हमारा ये प्रोग्राम को आप

कुमार सानू और अलका जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 10 मिनट बाकी है प्रोग्राम में, 8:30 बजे में शुक्रवार का दिन है और आज का मौसम भी खूबसूरत सुहाना मौसम होने वाले है। चले प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और वो भी उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के आवास में। आंखें फिल्म का नाम। सुनने वालों जिस तरह से आप सभी सुनने वालों को खबर किया गया है रेडियो SBS का वेबसाइट होता है radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट पर तरह तरह की खबरें, मौसमी समाचार और आपका ज्योतिष शास्त्र भी होता है।

Udit Narayan और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। सुनवालो स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 032-62-66-11। इसी तार की नंबर पर हमारा रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। आग ही आग फिल्म का नाम, सॉन्ग बाय उदित नारायण एंड कविता कृष्णमूर्ति।

आवाज में ये कैनबिस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव शहर उत्तराखंड से बस पेश किया जा रहा है। सुनने वालों तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी फरमाइश हुआ इश्तिहारी जरूरी खबरें के लिए रेडियो SBS के जरिए कोई भी काम काज आपको पेश करवाना है इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। टेलीफोन नंबर जो 24 पर दाख आप सभी के लिए बार एक बार होता है 030-265-65-60। से ये खास गाना बस पेश किया जा रहा है आप सभी।

ये खास गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। ये गाना भी एक एल्बम में से निकाला हुआ गाना है।

अनुराग की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार हम आपको ले चलते हैं सिद्धार्थ के आवास में।

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। कुछ गाने एल्बम में से निकालकर आप सभी के लिए आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। चले मधु की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: प्यार ना
1: सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट की जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर की जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए भी हमारा प्रोग्राम सुनाई देता है।

सुनने वालों 9:04 प्रोग्राम में 4 मिनट व्यतीत हो चुका है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज शुक्रवार का दिन 25 सितंबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का ये प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। शेरू तरह से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज का मौसम खूबसूरत सुहाना मौसम होने वाले हैं। धूप ही धूप का मौसम, झूरा मौसम। तो आज का ये शुक्रवार का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है और रेडियो SBS का एप नंबर 03-262-66-11। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम यहां से आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। तो प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश करने से पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। तो ले चलते हैं आज का पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम का पहला गाना की ओर। मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं।

फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई। आज की पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में ये गाना भी आपने सुना। चले फिल्म तीसरी मंजिल की ओर, मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। तीसरी मंजिल फिल्म का नाम।

Uit de film Tisri Manzil. Film genaamd Tisri Manzil. Mohammed Rafio, Rasha Jighi, Awas Me Ye. Gana was pish ki gaye. Mai Hu Pyar Tera. पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बाहर की ओर देखा जाए धूप ही धूप का मौसम है और आज का मौसम भी खूबसूरत सुहाना मौसम होने वाले है और ऐसे वीकेंड का मौसम भी काफी हसीन खूबसूरत सुहाना मौसम होगा। याराना फिल्म का गाना अपनी बार पेश होगा सॉन्ग बाय किशोर कुमार और गाना का बोल है छूकर मेरे मन को। शुक्रवार का दिन सुबह की प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार की आवाज में ये गाना पेश की गए याराना फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का एप नंबर 030-262-6611 इसी तार की नंबर पर हमेशा आप तार कर सकते हैं। स्टूडियो की ओर ऐप भी आप कर सकते हैं और ऐप द्वारा भी आप तार कर सकते हैं। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। उसी वेबसाइट पर तरह तरह की खबरें होते हैं, मौसमी समाचार और आपका दख होरोस्कोप, रोजाना आपका नया दख होरोस्कोप होता है, आप जाकर जरूर देखिए। और उसी वेबसाइट के जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और रेडियो SBS का ऐप पर आप ऐप कर सकते हैं। आशा भोसले, द मूवी सच्चा झूठा, 1970 का फिल्म और 1970 का फिल्म। और गाना का बोल है कल्ले प्यार कल्ले, द रॉक एंड रोल क्वीन दलित आशा भोसले।

मोहम्मद रफी और आज जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत सी सुनने वालों है जो स्टूडियो की ओर तार कर रहे हैं, इन दिनों ज्यादा सारे सुनने वालों होते हैं जो रेडियो SBS का ऐप के जरिए बस तार कर रहे हैं। 5:30 स्टूडियो टाइट हो चुका है। बहुत सी सुनने वालों होते हैं जो इन दिनों DAB प्लस रेडियो की जरिए बस प्रोग्राम सुनते हैं। बहुत सी सुनने वालों होते हैं जो DAB

बे प्लस रेडियो खरीदे हैं और उसी रेडियो के जरिए फुल डिजिटल साउंड में ये प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। हॉलैंडीज के बीच में मिडन नीदरलैंड में और प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में हमारा ये प्रोग्राम डे अबे प्लस रेडियो के जरिए बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है फिल्म फर्स। उसी फिल्म का ये खूबसूरत गाना और गाना का बोल है तुमसे ओ हसीना।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना पेश की गई। फर्ज फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई है। सोंदख 15 नवंबर रविवार 15 तारीख नवंबर रोटरडम आहोई आरटीएम स्टेज में उदित नारायण और आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले है। रागा इवेंट्स ला रहा है ये जबरदस्त कॉन्सर्ट उदित नारायण और आदित्य नारायण का, यानी कि बाप और बेटे का कमाल आप देखिए। सोंदख 15 नवंबर अपना टिकट आप जाकर खरीदिए iStrapTickets.com वेबसाइट पर iStrapTickets.com वेबसाइट पर आप जाकर अपना टिकट को खरीद सकते हैं। उदित नारायण और आदित्य नारायण का कॉन्सर्ट का टिकट जो है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन और हमारा आज का प्रोग्राम पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। बेस्ट सेलेक्शंस, बेस्ट गाने, द बेस्ट बॉलीवुड हिट्स रेडियो SBS के जरिए, संगीत भरी स्टेशन के जरिए, लाइव फनाउटेड मोस्टस्तत हॉलीडेज का सबसे खूबसूरत शहर से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मेरदाम एनन फिर तैयार।

The Train, फिल्म का गीत पेश की गए, काफी प्यार भरी गाना बस प्रोग्राम में पेश हुआ है, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गए। एटीसन मिडल्स 12 मिनट ऑन 4, 3:12 मिनट बाकी है सुबह 10 बजे में रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। और जिस तरह से मैंने आपको खबर किया अभी कि मीर दान एनन फिर तैयार 41 साल से ज्यादा रेडियो एस बी एस का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। और हमारी बात हमेशा आरजे आंशलिक के प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, उनकी प्रोग्राम बहुत से सुनने वालों पसंद करते हैं। द एनग एक्ट RJ और वो है RJ आंशलिक जो सालों से रेडियो SBS पर अपना प्रोग्राम चलाते हैं। मैंने कहा एनन फिर तैयार बस्तानव एन आंशलिक इज ओके लॉन्ग बाय ओस bij Radio SBS. De enige echte RJ Hollandisch en daarmee ik Hindustani Radio Bar. RJ Angelique. Hamari baat hamisha unki program rehte hai. Aur khas taur par ek khabar hum aapko dena chahenge. Kuch sapta se kafi mail andar aate hai. न सिर्फ यूट्रेक्ट शहर से लेकिन दूर दूर शहरों से भी सुनने वालों कुछ लोग हैं जो यहां पर आकर रेडियो SBS के पास प्रोग्राम बनाना चाहेंगे। अगर आप हमारे रेडियो SBS पर आकर प्रोग्राम बनाना चाहेंगे तो जरूर एक मेल भेजिए, तो मेल द्वारा आपको खबर किया जाएगी कि हो सकता है या नहीं, या तो एक निमंत्रण आपको दिया जाएगी यहां पर आने के लिए। कुछ बातचीत करने के लिए अगर आप यहां पर प्रोग्राम बनाना चाहेंगे दन मुचवेल एनग एरफारिंग हैब मेट कंप्यूटर, यहां हर एक काम कंप्यूटर द्वारा ही लमाल डिजिटल फुल डिजिटल द्वारा होते हैं। रिक्लाम न्यूज फर्केट्स इंफॉर्मेशन आलस का डिजिटल हियर। और यहां स्टूडियो में कोई भी एलपी सीडी कैसेट बांध या वगैरह नहीं है, आलस एंड आलस का डिजिटल। कोई गाना यहां पर नहीं पेश होते हैं यूट्यूब द्वारा, ये भी हम आपको खबर करना चाहेंगे। जब ये आप यहां पर प्रोग्राम बनाना चाहेंगे तो कोई भी गाना यहां पर आप नहीं चला पाएंगे यूट्यूब द्वारा। जिस तरह से लगभग सभी रेडियो स्टेशन जो है यूट्यूब द्वारा गाने चलाते हैं, यहां पर ये नहीं होता है। तो फिर भी जब आप यहां पर प्रोग्राम बनाना चाहेंगे तो जरूर एक मेल या ऐप आप भेज सकते हैं।

फिल्म का गीत पेश की गई है शबूसले की आवाज में। ये गाना अभी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई। 10:00 प्रोग्राम में 5 मिनट बैठित हो चुका है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। एक प्रोग्राम जो बहुत सी सुनने वालों बस सुनते हैं दुनिया की कोने कोने में भी। और ये प्रोग्राम हमारी बहुत सी सुनने वालों होते हैं जो गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ बस सुनते हैं। सभी को स्वागत किया जा रहा है। सभी के तार के लिए भी शुक्रिया धन्यवाद। और सभी जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है सभी को भी शुक्रिया धन्यवाद। शुभ दिन, शुक्रवार का दिन है, 25 सितंबर का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। फिल्म सबक, मोहम्मद रफी और लता।

एन लता जी की आवाज में फिल्म त्रिशूल का गीत आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो वेस्ट में इसकी जरिए अभी आपने सुना। 14 मिनट वेटेड हो चुका है 10 बजकर। सभी सुनने वालों को नहीं खुदा मोर्ख गुड मॉर्निंग। सभी अच्छी मूड में है मौसम देखकर, धूप ही धूप का मौसम है। और खबर अभी अभी मिला है कि दरहाल शहर के अंदर में कुछ सुनने वालों होते हैं जो हमारा आज रात्रि में का रोक पार्टी में जाने वाले हैं। समीर कुमार, एलता मंगेशकर, बांसी फिल्म का नाम

फिल्म बासी उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। 9 मिनट बाकी है सुबह साढ़े 10 बजे में और रेडियो वेस में इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, वीकेंड जो आ रहा है, वीकेंड का मौसम जो है खूबसूरत सुहाना मौसम भी होने वाले हैं, तो वीकेंड का मजा आप जरूर लीजिए। मौसम काफी हसीन खूबसूरत मौसम होने वाले हैं। गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे। आप तो जानते हैं पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में द बेस्ट ओल्डीज पुरानी नगमे हमेशा आपके लिए बस पेश किया जा रहा है। किशोर कुमार एंड लता, फिल्म का नाम तेरे मेरे सपने।

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके। हट तेरा।

गीता और गीता फिल्म का नाम उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो के अंदर तार आते रहते हैं, सुनने वालों तार कर रहे हैं, तार पर भी हंसी मजाक होते रहते हैं। 6 मिनट ओवर हेलो वेलो स्टूडियो टाइट हो चुका है। मैंने कहा ना हमारे सभी सुनने वालों अच्छे मूड में है, इसलिए कि मौसम जो इतना खूबसूरत सुहाना मौसम है। मोहम्मद रफी और लता सेहरा फिल्म का नाम।

गाना जो पेश की गई मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में सहरा फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। स्टूडियो के अंदर रेडियो SBS का ऐप पर सुनने वालों जोर टोर से ऐप कर रहे हैं। एक सुनने वालों अभी अभी खबर गया है कि आई Ticketspin.com वेबसाइट पर जाकर उदित नारायण और आदित्य नारायण का कॉन्सर्ट का टिकट खरीदे हैं, तो जरूर मुलाकात होगा, मिलकर देखेंगे। सोमवार 15 नवंबर रोटरडम आहोई में उदित नारायण और आदित्य नारायण का लाइव कॉन्सर्ट। लता जी की आवाज में ये गाना शगीर फिल्म का नाम

रेडियो SBS की जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। खासतौर पर शगीर फिल्म का नाम था, लता जी की आवाज में ये गाना भी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई। सभी नई नई सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर आए हैं, सभी को वेलकम। आज की प्रोग्राम में बहुत से नए सुनने वालों हमारे रेडियो SBS का ऐप पर आए हैं, सभी को वेलकम कहा जा रहा है। रेडियो SBS का ऐप पर और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। गीता दत्त और किशोर कुमार की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है।

काफी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई है। 1962 का फिल्म नहीं थी जस्तक का फिल्म हाफ टिकट फिल्म का नाम गीता दत्त और किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सुनने वालों आपको मालूम होना चाहिए कि पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जो है ये प्रोग्राम जो है हर सुबह आप सभी सुनने वालों के लिए बस पेश किया जा रहा है सुबह 9 बजे से लेकर के और 11 बजे तक, जिसमें सिर्फ पुरानी से पुरानी नगमे आप हर एक के लिए बस पेश किया जा रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सी सुनने वालों ये प्रोग्राम को बस सुनते हैं। कल शनिवार है तो कल सुबह 9 बजे से जरूर फिर से आप सुनते ही रहना। मतलब होते है कि एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है और होगा प्रोग्राम में तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में। और इस गाने के बाद प्रोग्राम में खबरें होगा, खबरें के बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं। मोहब्बत की कहानियां तलत महमूद और

चांदनी फिल्म का गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई, और फिल्म चांदनी का ये गाना बबला एन लता जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और ये प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। चलिए प्रोग्राम में श्रेया घोषाल एंड कुणाल गांजावाला होगा।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS की जरिया भी आपने सुना। Thames Drive 237 शहर उत्तराखंड से ये प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। सोनू निगम एंड अनुराधा श्रीराम प्रोग्राम में होगा।

अनुराधा श्री राम की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चोर मचाए शोर फिल्म का गीत अभी आपने सुना। अलका एन अनुमलिक चोरी चोरी चुपके चुपके उसी फिल्म का ये गाना अभी बार

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में फिल्म का नाम था चोरी चोरी चुपके चुपके, अलका और अनु मलिक के आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव टेम्स रेफ 237 उत्तराखंड शहर से आप सभी के लिए बस पेश किया जा रहा है। एक गाना अब की बार प्रोग्राम में पेश होगा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में सोनू निगम और अनुराधा पोटवाल की आवाज में।

एक बड़ी खूबसूरत गाना है फिल्म खाकी सोनू निगम एंड श्रेया जी के आवाज में ये गाना पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। आसरो मीठे इस खूबसूरत सुहाना मौसम में ये सब गाने नखमे जो है आपको काफी बेहद पसंद आते हैं। एक गाना कुणाल एन शरिया जी के आवाज में, काफी दिनों के बाद हम देख रहे हैं ये गाना आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है। खन्ना एन आयर फिल्म का नाम है, फिल्म 2007 में रिलीज किया गया है। कुणाल गंजावाला एन शरिया

कुणाल गांजावाला और शरिया जी की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों एक गाना और होगा और उसके बाद खबरें होगा। खबरें के बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं दोपहर का प्रोग्राम लेकर के, तो जरूर प्रोग्राम सुनते ही रहना। कुमार सानू और अलका प्रोग्राम में होगा नतीजा हमारी मोहब्बत का, नतीजा हमारी मोहब्बत का गाना का बोल खौफ फिल्म का नाम।

का नाम धोखा। आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे, फिल्म का नाम होगा डूब। हरिहरन और श्रेया जी की आवाज में अब की बार गाना पेश किया जा रहा है, हरिहरन एंड श्रेया जी की आवाज में। फिल्म का नाम धूप, उसी फिल्म का ये गाना पेश किया जा रहा है।

अरे हरन और शरिया जी के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। तुलसी कुमार और हिमेश हरी शबिया प्रोग्राम में होगा।

हिमेश रेशमिया एंड तुलसी कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए कुमार सानू और अलका की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-22-66-11 और रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। अलका एन सोनू निगम अब की बार प्रोग्राम में दिल मांगे मोर, फिल्म का नाम दिल मांगे मोर।

0: रेडियो SBS की. सर ये सोनू निगम और अलका जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में. बहुत सी सुनने वालों है जो इस वक्त प्रोग्राम रेडियो SBS का बस सुनते हैं जरूर और जरूर इस प्रोग्राम को सुनते ही रहना. चले कुमार सानू एन कविता कृष्णमूर्ति की ओर.
1: देखा है तुझे चैन नहीं आता है इस जमाने में मुझे कुछ और नहीं भाता है दिल मेरा चाहत

द माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश के बाद चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर की ओर हम आपको ले चलते हैं।

में आइड फिल्म बसेरा, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा, उम्मीद है कि आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। चले मोहम्मद रफी एंड लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है जेवल थीफ।

0: हर रोते को हंसा हंसा के गाए जा तू। जब तक है दम मतवाले हम मतवाले तुम।
1: किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। इसी तार की नंबर पर स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। मुकेश और सुमन कल्याणपुर।

कल्याणपुर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है radio.sbs.com.au। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। किशोर कुमार

सुरेश वत्कर और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। शहरी तरफ से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मोहम्मद रफी एंड लता जी की आवाज में अब की बार ये गीत पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है काली टोपी लाल रुमाल।

0: तेरी कसम।
1: पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस पेश की गई। काली टोपी लाल रुमाल उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। महेंद्र कपूर और उषा खन्ना की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में अब की बार पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS के जरिए जरूर सुनते ही रहना।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता।
1: सुन बलो, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0352656566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

छोटे मियाँ लाइव इन कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड आदित्य नारायण फादर एंड सोन सामन लाइव ऑप हेट पोडियम बिलीव एन अनवर्गेटलिके अवंड वोल इकोनिसे बॉलीवुड हिट्स प्रachtige म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट फन टॉप निवो रुक जाओ दिल दीवाने सोंदाग 15 नवंबर इन रोटरडम अहोय RTM स्टेज ट्वी जेनरेशंस एन पोडियम एन अनवर्गेटलिके अवंड मिस deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Baremia Chote Mia live in concert Udit Nara.

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आर जे अंशली करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो अलमाल, दिस इज यू आर जे अंशली करमलाल दी फा हार्ट वेलकम हेट इन द प्रोग्राम गीतों के लहर। वेल रिएक्शन कैन इट ऑल टाइम सर्फ माय नाइट वेबसाइट www.radiosbs.nl।

होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, इसका सॉन्ग दो जगजीत सिंह एंड कवाम आई द फिल्म प्रेम गीत एंड गजोंग दो किशोर कुमार एंड आनंद कुमार कोम्त प्यार लो प्यार।

चढ़ाते रंग आपने सुना फिल्म यमला पगला दीवाना से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है कोई मिल गया से, ऋतिक रोशन का फिल्म है। गाने के बोल है इट्स मैजिक आई हैव गॉट द वाइब दैट यू नीड।

बाकी सब फर्स्ट क्लास है। आपने सुना अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में फिल्म कलंक से, और अब आप सुनिए फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। उदित नारायण और अलका याज्ञिक की आवाज में आप सुनिए चांद छुपा बादल में।

कुछ तो है फिल्म का नाम, और अब आप सुनिए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा से, अर्जुन सुखविंदर सिंह और पैरी की आवाज में, हाउस पार्टी सॉन्ग। कुछ तो है फिल्म का नाम, और अब आप सुनिए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा से, अर्जुन सुखविंदर सिंह और पैरी की आवाज में, हाउस पार्टी सॉन्ग।

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। इस खुशाम दूर सोनू निगम एंड अल कयाच ने कैन क्वाम आउट द फिल्म धड़कन। आउट द फिल्म बेल बॉटम कम दाखा समा दूर प्रतिभा सिंह खैर मंग दे।

तुम क्या जानो दिल करता तुमसे कितना प्यार वास आए द फिल्म आशिक कैन आए द फिल्म हम हो गए आपके इस het volgend liedje in het programma Geet om Kilher via Radio SBS. Gezongen door Kumar Sanu en Elke Yachnik komt. De titelsong van de film Hum Ho Gaye Aapke.

हर दिल जो प्यार करेगा फिल्म से आपने सुना टाइटल सॉन्ग अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में, और अब हम सुनते हैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से मुंबई दिल्ली की कुड़िया

चली आई चली आई इज द फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ खुजान दूर चित्राएं के एंड द फिल्म काटे कोम्त इश्क समंदर.